अकाल प्रतिष्ठ की कर दे तो सोना नाथ अनाथ न मोस तो सोना दानी न मोस तेरे वर्गा नाथ नहीं ते मेरे वर्गा कोई अनाथ नहीं तेरे वर्गा कोई दानी नहीं ते मेरे वर्गा कोई भिखारी नहीं एक एक पंक्ति बड़े प्यार नाल सारे मिल के आके शोर किया।

ਵਿਹਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵਿਹਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਿਹਲਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਤੂੰ ਨੇ ਫਿਰੇ ਜਿਉਂ ਬਤਾ ਲਿਆ, ਚਾਰ ਪੁਕਾਰੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮਾਨੇ, ਖੱਟ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਬਾਤ ਵਖਾਨੇ। ਜਿਸ ਵੱਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਬਹੁ ਸ਼ਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ, ਵੇਖੇ ਸਰਬ ਕੰਢੋਲ, ਪੁੱਜੇ ਸੁਨਾਈ ਹਰ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ, ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੇਵਲ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 69 ਸਾਲ 10 ਮਹੀਨੇ 10 ਦਿਨ ਉਮਰਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। 1970 ਦੀ ਪਰ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਗੰਧਰਵ ਦੇਵ ਗੰਧਰਵ, ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ, ਕਰਮ ਲੋਕ, ਅਜਾਨ ਲੋਕ, ਇੰਦਰ ਲੋਕ, ਵਿਸ਼ਨ ਲੋਕ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ, ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰ ਵਸਤੂ। ਜੈਸੇ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਦਾ ਸਾਰ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਯੋਗ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂ ਕੇ ਸਮਝੀ ਕੋਈ, ਜੇ ਸਮਰਤ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਸਤਵਾਰ ਹੋ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਅਕਸਾ ਤੀਰਸ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰੇ ਕਲ ਆਸਰੀ ਹੋ, ਜੈਸੇ ਕੋਟ ਬਸਤਾ ਉਰਦ ਮੁਖੀ ਬਸੰਤਰ ਮੈਂ ਤਨ ਦਾਹੀਦੀ ਹੋ, ਜੈਸੇ ਲੱਖ ਮੇਰ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਮੈਂ ਸਮੇਰ ਜਗ ਭੰਗ ਠਿਓ, ਪੁਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਬਸੇ ਖੀਤੀ ਜਨੇ ਕਵੇਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਚਾਰ ਦੇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਅਪੋਰਸ਼ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਅਪੋਰਸ਼ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰਚਿਤ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੰਕੇ ਉੱਤਰ ਲੋਭ ਤਮਾ ਪਕਸ਼ਪਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਕਸ਼ਪਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਰਕ ਹੈ। ਜੋ ਰਿਗਵੇਦ, ਯਜਰਵੇਦ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ, ਅਥਰਵਨ ਦੇ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਪੋਰਸ਼ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ। ਚੌਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਉਪਾਸਨਾ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕ ਕਥਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 4 ਉਪਵੇਦ ਬਣਾਏ, ਗੰਧਰ ਤਨਰ ਅਰਥ ਉਪਵੇਦ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੇਹ ਹੈ, ਗੇਹ ਹੈ, ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਪਰਮ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸਭਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਲਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਸਭਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੇਹ ਹੈ, ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਰੂਪ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਗਿਆਨ, ਜਗਤ ਸਮੂਲ ਅਨਰਥਪੁਨ ਫਤਾਂਕੀ ਹਥਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਕੇ ਸਵਾ ਵਿਚੋਨੀ ਹਈਏ ਮਈਏ ਇਹ ਖਿਆਨ ਜੋ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਰਜਨ ਤੇਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਮੇਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਈਏ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਾਂਗਾ। ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 8 ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਦ ਵਿਆਜ ਨੇ 18,000 ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਉਪਾਸਨਾ ਕਾਂਡ, ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ,
ਸਭ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਰਾਮਾਇਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਵਾਲਮੀਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਸੱਜੋ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਾ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਤੀ। ਉਸਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਤਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਣਾਈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਠਾਂ ਗੁਰੂਆਂ 43 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ, ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ, ਕੋਈ ਤੁਕ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਰਨ ਪੋਥੀਆਂ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਗੁਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਸ਼ ਕਬੀਰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ ਤੋ ਲੁੱਟ ਲੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ, ਫਿਰ ਪਾਸ਼ੋ ਪਿਸਤਾਏਗੋ ਰਾਮ ਜਾਏਗੇ ਛੂਟ। ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੇ ਆਨ ਕੀ ਆਸ, ਤੇ ਨਰ ਦੋਸਕ ਜਾਏਗੋ ਸਤ ਪਾਖੇ ਰਵਦਾਸ। ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਤੁਕ ਤੁਕ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਲੈ ਲਓ, ਅੱਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਬਿਸਰੀ ਮੈਂ ਜਾ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਨੇ ਆਰ ਜਾ ਉਰਦ ਸੁਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵੇ ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਸਭ ਖੋਏ, ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਦਿਖਾਏ ਕੇ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਾ ਲੇ, ਪਰ ਜੇ ਤਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕੇ। ਸੁੰਦਰ ਸੇਜ ਅਨੇਕ ਸੁਖ ਰਸ ਭੋਗਨ ਪੂਰੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਇ ਚੰਦਰ ਸੁੰਗਲ ਲੈ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਸੂਰੇ, ਪਰ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਦਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀਰੇ। ਤੋਤਨ ਤਿਆਗ ਤੇ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜਦ ਪ੍ਰੇਤ ਬਖਾਨ ਤਿਰਿਆ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਪਲਿੱਤਰ ਸੁਮਿੱਤਰ ਸਖਾਏ ਬੇਗਨ ਕਾਰੋ ਆਏ ਸਦਾ ਹੈ, ਪੌਨ ਪੰਡਾਲ ਧਰੇ ਗਰ ਜੇ ਤਕ ਸਾਗਤ ਪ੍ਰਾਣ ਬਗਾਨ ਕਹੇ ਹੈ, ਚੇਤ ਰੇ ਚੇਤ ਚੇਤ ਮਹਾਂਪਸੂ ਅੰਤ ਕੀ ਵਾਰੀ ਅਕੇਲੇ ਹੀ ਗਿਆ। ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਕਹੂ ਜੇਸ ਕੋ ਮਾਨਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹੂ ਮਹੇਸ਼ ਕੋ ਇਸ ਬਿਤਾ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨਾਇਕ ਜਾਏ ਭਜੇ ਅਗਿਓ ਕਟੇ ਹੈ, 12,000 ਵਿਚਾਰ ਅਰੇ ਜਦ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਸਭ ਹੀ ਤਾਂ ਜੈ, ਤਾਹੀ ਕੋ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਮਾਨ ਹੋਏ ਜੋ ਥਾ ਅਬ ਹੈ ਅਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਆਦਿ ਪੂਰਨ, ਮੱਧ ਪੂਰਨ, ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਆਦ ਮੱਧ ਅੰਤ ਪਰਸ ਹੋਈ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਲਈਏ ਜੀਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ ਸੱਚੀ ਤੇ ਨੰਦ ਸ਼ੁੱਧ, ਉਸ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਉਪਤਾਰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏਕ ਆ, ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏਕ ਆ, ਜਗ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏਕ ਆ। ਏਕੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਆ ਸਾਰਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਨਾਮ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਓਂਕਾਰ ਏਕੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਏਕੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਏਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਨਿਕਲਦਾ, ਏਕੇ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਮਿਲਦਾ। ਜੈਸੇ ਵੇਖੋ ਏਕਾ, ਦੋ ਏਕੇ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦੋ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਤਿੰਨ ਏਕੇ ਹੋ ਗਏ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਰ ਏਕੇ ਬਣਾਓ ਚਾਰ ਹੋ ਗਏ, 20 ਏਕੇ 20, 100 ਏਕਾ 100 ਹੋ ਗਿਆ, 2000 ਏਕਾ 2000 ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਏਕੇ ਉਨੇ ਉਨੇ ਗਾਹ ਹਿੰਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਸੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, 50 ਹਿੰਸੇ ਹੈ ਜਾਂ 100 ਹਿੰਸਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਏਕੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੈਗੇ। ਏਕੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਹੈਗਾ? ਏਕਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਹਿੰਸਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਸੇ ਏਕੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਏਕਾ ਹਿੰਸਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਲ ਤਰੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤਰੰਗ ਜਲ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਭੂਸ਼ਣ ਸੋਨਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਘੱਟ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਘੱਟ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਏਕੇ ਕਾ ਰੂਪ, ਏਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਏਕੇ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਏਕ ਸੰਸਾਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਵਾਗ ਤੇ ਕੰਦੂਕਾ ਕੋਟ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਨਿਆਰੇ ਨਾਰੇ ਹੋਏ ਕੇ ਫਿਰ ਆਗਮ ਮਿਲਾਏਗੇ, ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਧੂਰ ਤੇ ਅਨੇਕ ਧੂਰ ਪੂਰਤ ਹੈ, ਧੂਰ ਕੇ ਕੰਦੂਕਾ ਸਭ ਧੂਰ ਹੀ ਸਮਾਏਗੇ, ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਨਦ ਤੇ ਤਰੰਗ ਕੋਟ ਉਪਜਤ ਹੈ, ਪਾਨ ਕੇ ਤਰੰਗ ਸਭ ਪਾਣੀ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੈਸੇ ਵੀ ਸਰੂਪ ਤੇ ਅਭੂਤ ਪੂਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਤਾਹੀ ਤੇ ਉਪਜ ਸਭ ਤਾਹੀ ਮੈਂ ਸਮਾਏਗੇ। ਦਸਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਉਸ ਏਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਏਕੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਏਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਏਕਾ ਨਾਮ ਕਿਸ ਕਾ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ। ਕਿਉਂ? ਗੋਰਖ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪ ਦਾ ਕਿਆ ਮਤ ਹੈ, ਆਪ ਦਾ ਕੌਣ ਸਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਦਾ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ,
यह चक्र चेहनर बर्ण ज्यादा पात नहीं जे रूप रंग को कहना सकते के ऐसा जो परमात्मा है बर्णो चेनो बारा नानी का पाश अधिक से सहारा ये अखर खर जाएंगे वो अखर में नहीं ऐसा जो अद्वैत परमात्मा है जिसके बीच में सुजाति विजाति सुगत पेर नहीं है जिसके बीच में देश काल वस्तु परिशेर नहीं है जेरा नाम रूप से रहता है जेरा थापियो न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए ऐसा जो परमात्मा है उसकी प्राप्ति इस जीव नू करोने वास्ते साडा अवतार हैगा असि उस परमेश्वर का उपदेश करते हैं होर किसी वस्तु का असि संसार के बीच में उपदेश नहीं करते हैं जेरा निरभौ ते निर्वैर है निरभौ ते निर्वैर ये दो विशेषण वे कटते हैं ये परमात्मा का स्वरूप लक्षण है जेरा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर परमात्मा का स्वरूप लक्षण है इसका असली स्वरूप ही समझ लेना इसे वक्रे नहीं आ गया इस करके इसका जाप करने से तू तू करता तू हुआ मुझे मैं रहा न हूं यह वापा पर का मिट गया जब देखा था तो जिन्हें अवतार दिखी मुनि है दसे गुरु है दरबार साधि वाणी है वेद है ग्रंथ है विशेषादिक रिखी मुनि है कबीर नाम दे भगत है ये सारे परमात्मा के प्रसंग आते हैं परमेश्वर नु कथन करते हैं भाई तुसी उस परमेश्वर की प्राप्ति करो ये जीव अपनी उत्पत्ति से पहले उस परमेश्वर का रूप था जिस वे कोई चीज ना से पैदा हुई ना आकाश ना पवन ना अगन ना जल ना पृथ्वी कुछ भी ना था रूप था माया ने अविद्या ने झूठी हंगता हंगता ने काम ने क्रोध ने लोम ओहकार ने उस परमेश्वर से इस उस परमेश्वर से इन जुदा करके इस संसार रूपी जंगल विच लिया के ते गृहस्थ रूपी खूह विच सुट दिता है हुण यह दुखी हुंदा कलेशा नूं प्राप्त हुंदा हुण महाराज तो कहिंदे नैन न देखे साल से नैन बिहालिया करण न सुनी नाद करण मुंद कलिया रसना जप न नाव तिलो तिल कर कटिए हरा जब विश्व गोविंद राय जनम कटिए सानू उपदेश देंदे जिन काल मानस जन्म निर्मोल पायो सफल जन्म गुरु चरण शरण कै लोचन अमोल गुरु दरस अमोल देखे सरबन अमोल गुरु बचन धरन कै नासका अमोल तिर नार बिंद वासना कै रसना अमोल गुरु मंत्र सिमरन कै हस्त अमोल गुरु देव सेव सफल कै चरण अमोल प्रदक्षिणा करन कै ताही शरीर प्रवान होवेगा जे परमेश्वर दे पासे लगेगा ताही यह शुद्ध होगा ताही निर्मल होगा परमेश्वर के नाम के बराबर संसार के बीच में कोई वस्तु नहीं हैगी है। एक शाबे के बीच में कृष्ण नाम लिख के पा दिया दूसरे शाबे के बीच में नारद मुनि ने कुल दुनिया का सोना लाल मोती हीरे पा दिए वो नाम का पास पा ही रहा तन तन राजा जनक है जिन सिमरन की योग एक करी के सिमरन पापी तरह ने इसे करके नामदेव जी कहते हैं पावो फेरी हाथों ताल नामा गावे गुण गोपाल गंग जमन जो उल्टी रहे तो नामा कहता रहे गंगा जमना उल्टी नहीं बग सकते नामुमकिन है बगजान तो बगजान जिरी गल हो नहीं सकती हो जाए नामदेव जी मनुखा दे के बीच में ऐसे परमेश्वर नू ऐसे परमात्मा नू नहीं छड सकते बसदा बस की नहीं सब राजे बेनती करे पटरानी पूत प्रहलाद की हो नहीं माने तिंतौर अच्छा नहीं प्रहलाद कहना मैं भी आखिर नहीं लगता अपनी माता के हद नू कहना मैं परमेश्वर नू मनुखा दे के बीच में नहीं छकता सुमन मूसन अपने पिता नू आंदा कब दब जाओ जारी विशद प्रेम बिहार मूसन तब ही मूसिए विशद पुरख दिया हे पिताजी मैं व्याकल नहीं हुंदा दुनिया की चीजां जे मैनू परमात्मा भुल जावे मैं उस वेले व्यापक व्याकल हो जाना कहां पयो ये तन पय शनशन प्रेम जाए तो डर पै तेरे जन ये रविदास भगत कहना मैं जे मेरा प्रेम जावे कमती होवे महाराज ता मैं गल रहेगा ऐसा जो परमात्मा हैगा ऐसा जो सचेतनंद स्वरूप परमात्मा हैगा उन सारे रिखी मुनि अवतार सब वेद ग्रंथ जिन्ने भी सज्जे द्वापर तेरे ते कलजुग के बीच में होए हैगे वो सारे उसनु कथन करते हैं कि उसकी प्राप्ति करो तुसी अपनी उत्पत्ति से पहला उसका रूप थे ये हंगता ममता झूठी माया ने फन जुदा करके ये जीव बनाता ते हुन तुसी फिर उदे नाल मिलो देखो शब्द भी आउंदा माया ना होती बाप ना होता कर्म ना होती काया हम नहीं होते तुम नहीं होते कब न कहां ते आया राम कोई न किसी केरा जैसे तरबर पंख बथेरा चंद न होता सूर्य न होता पानी पवन मलाया शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहां ते आया खेचर पूछे तुलसी माला गुरु प्रसादी पाया नाम परम तत्व है सतगुरु है लिखाया मतलब की है तू पहले ब्रह्म था
गुरु नानक साहब भी कहते ना तो स्वर्ग मस्ते आला दो सुख पिस नहीं कह कला जन्म मरण नहीं नरक सुख ना को आए न जाएगा ब्रह्मा विष्णु महेश न कोई अवर नदी से को सब उल्ट पवन मन मीन सी चपल गत दसवें द्वार पर आगमन वास है ताही ना पाव के पवन जल पृथ्वी आकाश न है सर सूर उत्पतना विनाश है ना ही प्रकृत वृत पिंड प्राण ज्ञान शब्द सुरत ना ही दृष्ट न प्रगास है स्वामी न सेवक उन्मान अनाद परे निरलम निर्मन विषम विश्वास है। देखो ये भाई गुरदास जी ने लिख दिता इस करके इन्होंने तात्पर्य है कि जीव अपनी उत्पत्ति से पहले परमेश्वर का स्वरूप था इनू माया ने विद्या ने पुत्रा ने स्त्री ने धन ने दौलत ने झूठे मोह ने ये शरीर के इतिहास ने फिक्रा ने चिंता ने इन जुदा कर दिता उस परमेश्वर से हूं ये जीव उस परमेश्वर नाल किदा मिल सकता है। हम सानू सोच तो यह करनी चाहिए है फिक्र तो यह करना चाहिए कि जुदा तो असि हो गए हैं हूं असि परमेश्वर नाल किदा मिलिए। कोई जन हर स्यों देवे जो मेरी लागी प्रीत सुजान स्यों मैनू बरजे लोग है जा कोई हैरे संत जो तोरो देखूंगा कोई संसार के बीच में संत महात्मा लिखी मुनी होवे यह मैनू मेरे पिता से मैं जुदा होया मैनू अपने पिता नाल मिला देवे। हूं यह ढंग तरीका असि की करिए संसार के बीच में आके भी किदा उस परमेश्वर नाल मिलगी। कोई किसी संतान महात्मा पर शंका करदा हां ना तथ मैं दुखी दरियो देख संसार बुढ़ तो पव सिंध में मोहे करो प्रभ पाल महाराज मैनू इस संसार विचो पार करो मेरा जन्म मरण कटो वो संत महात्मा की उपदेश करते हैं। फिर किदा ही जीव जीवित भाव का नाश करे अग्ञान का अविद्या का नाश करे सेंसे ग्रंथि का हृदय ग्रंथि का जन्म मरण का कर्म का कामना का देह दया का मोह का किदा ही नाश करके उस परमेश्वर नाल मिले। हुण इह हरेक दे जुग्यासु दे मन के विच में शंका पैदा हुंदी है इहदी निवृत्ति करने वास्ते गुरु नानक देव महाराज कहिंदे आ इस संसार की निवृत्ति करने वास्ते और परमेश्वर की प्राप्ति वास्ते तुसीं ध्रुव मंगल करो जिदा ध्रुव ने कीती है पंजां कालां दा ध्रुव विघन पाने वाला सारे देवते इंद्र दे सने सब विघन पाउंदे से ओदे मां पे भी आके विघन पाउंदे से ध्रुव अपने निश्चय के विच में अटल रहा कामयाब होया कि नहीं होया। दूसरा दृष्टांत सज्जू के बीच में प्रहलाद भगत वो भी सत्तर अठा साल का था उदे भी माता पिता दुश्मन हरण कसवर ना के सारे दुश्मन अगाना लाते हैं समुद्र च पाते सुटते हैं तो उपर हजार हजार मन के पर्वत उत्ते डिगते हैं वो राम राम राम राम राम देखो कामयाब हो गया जिदा कामयाब हो गया जिदा वो परमेश्वर नाल मिले वेखो सनक सनन सनातन ब्रह्मा के पुत्र होया अपने पिता नूं कहिंदे मेरा तू कोई पिता नहीं सानू ज्ञान करता पिता फिर वो ब्रह्मा ने जाके विष्णु भगवान नूं आख्या विष्णु नूं हंसा अवतार धारना पिया उन्होंने जाके ज्ञान करना पिया सनक सनन सनातन वेखो कामयाब हो गया। वेखो तेरे ते जो के विचों पिलरी ने किन्नियां तकलीफां पाईयां हैगियां पिलरी ने बहुत ही तकलीफां सहियां हैगियां रिखी भी मुखालफत माता भी पिता भी पति भी सब मुखालफत उस वेले से सब दुख तकलीफ लेंगे थे वो राम राम जपती सी ते श्री रामचंद्र ने उन्हें नौदा प्रकार की भक्ति सुना के ते ज्ञान दे के विकू के समय झूठे वेल खाते है ते चरण तूर मथे में ला के उन्हें हाथ मिलान कर देता है। देखो हनुमान जी हो हनुमान जी श्री रामचंद्र जी ने एक माला दिती सी वो सी रावण के तोशे खाने में जमा रावण नु ब्रह्मा पासों मिली सी ब्रह्मा नु विष्णु पासों मिली सी ओह फिर विष्णु ने मन भी सोचा कि श्री रामचंद्र नु दे दईए ओ श्री रामचंद्र जी ने माला हनुमान नु देती हनुमान माला ही पर नहीं जा विष्णु ने आके पंदे की मैं आखिर जिसके बीच में परमेश्वर का नाम है नहीं वो चीज मेरे किसे काम की नहीं तेरे शरीर च केड़ा नाम है सारे शरीर के बीच में राम राम राम राम राम मनसूर की सुभा विचों भी एन लाख गुरु रामदास गुरु अमरदास महाराज नु कहंदे है हम कीरे किरम सतगुरु सरनाई कर दया नाम प्रगास मेरे मीत गुरुदेव मुख राम नाम प्रगास फिर भी परमेश्वर दा नाम मंगदे है जिदा ओ मुक्त हो गया भाई मुक्त मिच्छ सी के तात विशियन विश्व त्याई शुमार जब दया तो सतू की बदसा ये तेन मुक्ति दी इच्छा जिदा उन्होंने की है इदा ही तू संसार के बीच में अपने घर देखो उन्होंने कितना परमात्मा के बीच में प्रेम था अर्जुन का कृष्ण भगवान के बीच में कितना प्रेम था जिस वे कौरव पांडवों का जंग शुरू होया तो उस वे दुर्योधन मदद लेने वास्ते जाता पर शरदा नहीं
विश्वास नहीं, नेचर महाराजियां बानियां रोज सुनते पर श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं आएगा, इधर ध्यान ही नहीं आएगा, पुत्रां तियां इस्त्रियां ते नेच आएगा, कितों खावांगे पीकर, महाराज ते नेच नहीं। वो कहने काहे रे मन चित में उदम, जा आह राजू परिया पहल पतन में जंतो पाए ताकर जी के आगे तरिया, मेरे माधव जी सर संत मिले सो तरिया। इस करके दुर्योधन की श्रद्धा नहीं, वह जाके निवेशकार नहीं कृष्ण पुवान करता, तो वो सराने वाला कुर्सी लह के सरे जुत्ती बैठ जाता है। पूरे मगरों फिर की होया युधिष्ठिर ने अर्जुन आके अर्जुन परमात्मा का पता नहीं लगता, कदे देवतियों के पास हो जाता कदे राक्षसों के पास हो जाता, तो तू भी जा। अर्जुन श्रद्धालु सेगा, वो स्नान किया वस्त्र धोते प्रसाद लिया, वो जिस वे अर्जुन गया तो उसने जाके चरणा के बीच में दंडवत प्रणाम किया, प्रदक्षिणा लिया, चरणा का ध्यान करके बैठ गया। तो कृष्ण भगवान को जानी से त्रैकाल दर्शी से उन्हें वेखिया, एक पासे दुर्योधन बैठा, एक पासे अर्जुन बैठा। पहले अर्जुन की तरह वेखिया, अर्जुन ने कहा तू की चाहना जी, मेरा जंग हो रहा, मेरी मदद करो। दुर्योधन कहता जी मैं पहला ना आया, मैं तो पहला ना आया, मेरी सुनो। दुर्योधन क्या बात, मेरी मदद करो। श्री कृष्ण भगवान कहते हे दुर्योधन, साडा एक संकेत है, धर्म है, बिरद है, साजी शरण के बीच में कोई आवे असि उसकी मदद कर दे, असी तेरी भी मदद करनी, असी अर्जुन की भी मदद करनी है, दोहां की मदद किदा करूंगे, दोहां की मदद इदा करांगे, एक पासे मैं अकेला होवेगा और शास्त्र नहीं पकड़ांगा जंग के बीच में, एक पासे मेरी सारी फौज सारे शास्त्र अस्त्र खजाने होंगे, तू पहला आया, तू जी मर्जी चीज मंग ला। शरद सऊरी श्रद्धा है ना, इस करके दुर्योधन कहन लगा महाराज जे तुसी जंग भी नहीं करनी ते युद्ध के बीच में शास्त्र भी नहीं पकड़ना ता असी तुहानू उत्थे की करना हैगा, थोड़े कोई असी नाच नहीं चाहने है, रसा पौनिया है, बाकी सारी फौज दे दियो। कृष्ण भगवान ने कागज लिया ते उपर दस्तखत कर दिते, हे दुर्योधन मेरे बिना सारिया फौजा का तू मालिक। खुशी होकर चला गया। पिछो अर्जुन नू कहन लगे, अर्जुन जी तू पहला आंदा तू ना ले लेने। अर्जुन कहंदा हे महाराज, इस संसार के बीच में मेरे को किसी देवी देवते दी रिद्धियां सिद्धियां दी खजानियां दी शास्त्रां अस्त्रां दी किसी मुक्ति दी किसी वस्तु दी भी इच्छा नहीं हैगी है, ना मैं आप नहीं चाहना कि तुझे शास्त्र पकड़ो, ना ये चाहना कि मैनू सलाह दियो, बस मैं एक वस्तु चाहना हैगा, जिस वेले मेरी पार्टी इधर खलोवे ते मेरे मुखालफे दुश्मन खलोन तो सारे नू पता लगे कि कृष्ण भगवान मेरे पक्ष के बीच में खलोता है, बस मैं इन्हें चाहना है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन तेरी श्रद्धा है, तेरा विश्वास है, यह इस मैदान के बीच में तेरी फतेह होगी और मैं तेरा रथ फटकाऊंगा। देखो प्रेम सच कहो सुन ले सभी, जिन प्रेम की इतनी प्रभाव पायो, गोविंद पाओ भगत भुग बेबे नानक किदा गुरु नानक देव ने खिंच लेंदी सी। वो सिर्फ एक सवैया हैगा सूरज प्रकाश के विच भाई संतोष ने लिखा, हे जगबंध प्रभु सो कंग मुकंद आनंद को दर्शन दानी, श्री करतार दतार मुरार अवतार लियो सोई मैं मन मानी, जे शरदा मम साच हृदय मैं तो प्रगटो पर भात महानी, शोक हरो निलोकन को शोक अतमत मूर्गवानी। की प्रेम सा बेबे नानकी मर जाती सी प्रेम के बीच में, महाराज फिर खिचे हुए आ जाते से। फिर भाई मांझ का प्रेम देखो, भाई मांझ का किन्ना प्रेम था, पंजवें पिता के चरणों के बीच में कन्या भी गहने पाई, स्त्री भी गहने पाई, फिर लंगर दी जाके सेवा लगा कर महाराज ने लंगरों रोटी खाना भी हटाता, फिर दसा नह की बार किरत करके लिया वो रोटी खादा, फिर लंगर दी सेवा करता है, फिर महाराज उन्हें बुलाते नहीं है। फिर एक दिन वो लकड़ियां लैन वास्ते जांदा सतगुरां दे लंगर वास्ते, ते लकड़ियां लेके आंदा, रास्ते के बीच में शाम पै गई है ते उदी अखां मोहरे उदी दस्तार आ गई है ते नेरी पिछा नहीं जांदी है, मोहरे खूह दी मन है नी विच गिर पिया, लकड़ियां ते जन्ने लंगा सारी रात खलो के महाराज दे गीत गाउंदा रहिंदा, गीत गाउंदा रहा, महाराज दा भजन करदा रहा। फिर सवेरे पंजवें पिता वेखो किदा अपने संगत विचों नंगी पैरी फिर लेने वास्ते नठे है, फिर साडा सिख खूह च डिग पिया, फिर जल्द खूह दे लागे गए तो पंजवें पिता ने भाई मांझ नूं आख्या, भाई तू कौन आ खूह के विच में, कहिंदा मैं गुरु करदा कूकरां दा कूकर हैगा दासां दा दास हैगा, भाई जे तू मेरा भला करना चाहना तो लकड़ां सतगुरां दे दरबार के विच में लै जा,
महाराज कहते तेन लकड़ा का वाद फेंक दो अपने शरीर का कोई नहीं फेंको, कहती अपने शरीर का मैं कोई नहीं फेंको, मैं तो लकड़ा का फेंक रहा है, मेरे प्रेम के बीच में फर्क न पा गया। जिस कारण प्रभु मेरा जुदा हो अग लग फूक वैसे मूल ते ब्याज न सगल धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल करो सगल उद्यम है उद्यम फला हर का नाम जप जे सदा। फिर महाराज ने लकड़ा कढ़िया मगर वो कढ़िया भाई मंज न कढ़िया तो महाराज ने उन भर दे दिया। मंज प्यारा गुरु न गुरु मंज प्यारा मंज जाग का बहुता गुर लंघन यारा। जे हम परमेश्वर नाल मिलना हो जन्म वर्ण कटना हो भाई जिदा भगत ने की कबीर नाम दे वाद करने की हैगी उदा करे बंदा उस पासे लगे। देखो कबीर नु अंतर जामी परमात्मा ने दर्शन दिते है। कबीर साहब ने कहा कबीरा जो मर्जी मंग ला शब्दों का कोट सूर जाके प्रगास कोट महादेवर को लास दुर्गा कोट जाके मरगन करे ब्रह्मा कोट भेद उचरे जो जाचो तो केवल नाम आम देव से नहीं काम। हे प्रभु हे अंतर्यामी हे प्रेरक तेरे दरवाजे के बीच पता नहीं किन्ने ब्रह्मा किन्ने विष्णु किन्ने शिव जी किन्ने इंद्र किन्ने चंद्रमा किन्ने सूरज किन्ने आकाश पावन लगन जल पृथ्वी किनिया रिधिया किनिया सिद्धियां है इन्हों नाल मेरा कोई काम नहीं मैंने तो अपना नाम मनुखा दे मिली है उन्हू पाने वास्ते मनुखा दे मिली है इतने पहले हो कोई काम नहीं। संसार की उस उत्पत्ति से पहले वो परमात्मा सत था महापरलो ते बाद भी परमात्मा सत होगा हूं भी वो परमात्मा सत है। ये संसार अपनी उत्पत्ति से पहले नहीं था महापरलो ते बीच में नहीं होगा हूं भी नहीं है। जैसे राजा हैगा वो उन्हें सुपना आया राजे नु वो सुपन अवस्था के बीच में राजा भिखारी बन गया वो भिखारी तो है नहीं है तो राजा ही वो तो निंदा दोष करके है वो पहला भी राजा मगरों भी राजा हूं भी राजा ही है। भिखारी पुना पहला भी नहीं मगरों भी नहीं हूं भी नहीं ऐसा ही वो परमात्मा हैगा। इन देखो पंजवे पिता का शब्द आंदा हैगा तू फेर साख तेरी फूली तू सूखम होया स्थूली तू जलनद तू फेन बुध बदा तुद बन पालिए जियो तू सूत मनिये भी तू है तू गंठी मेर सिर तू है आद मध अंत पदा सोई अवर न कोई दिखालिए जियो तू निर्गुण सरगुण सुखदाता तू निर्वाण रसिया रंगदाता अपने कर्तव्य आपे जाने आपे तुद संभालिए जियो तू ठाकुर सेवक प्रवापे तू गुप्त प्रगट प्रवापे नानक दास सदा गुण गावे एक भोरी नजर निहालिए जियो। उस परमात्मा नु कथन किया दरबार साहब के बीच में भी तीन तरह की वाणी एक कर्म कांड है एक उपासना कांड एक ज्ञान कांड है। कर्म कांड वो होंदा जिदों भाई गुरदास जी ने लिखा हूं तुस कोल कुमाया गुरमत हृदय गरीबी आवे हूं तुस कोल कुमाया पर नारी दे नेर न जावे हूं तुस कोल कुमाया पर ददबे नू हथ न लावे हूं तुस कोल कुमाया सतगुरु दा उपदेश कुमावे हूं तुस कोल कुमाया थोड़ा समय थोड़ा ही खावे गुरमुख सोई सहज समावे। ऐसा संसार के बीच में रहे ये कर्म कांड है। उपासना कांड का दरबार साहब के बीच में 4500 शब्द है। पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर ताकि योग गि जेरे जन तारे ब्रह्मांड खंड हर ताको नाम जपी जे रे मन की मती ते आगो हरिजन हुकुम भू सुख पाइये रे जो कुछ करे भले सोई पल मानो सुख दुख होई ते आइये रे कोट पत खन माहे उदारे करते बार न लागे रे दीन दरद दुख पंजन स्वामी जिस पावे तिसे नवाजे रे सबको मात पिता पर पालक जी प्राण सुख सागे रे दिंदे टोट नहीं तिस करते पूरे दी उदत नागे रे जाचक जाचे ना प्रभ तेरा कट कट अंतर सोई रे नानक दास ताकी शरनाई ताते फिर थन कोई रे। इस करके महाराज ने तो फैसला कर दिता मुक्ति विखे भी राग जो बंधन विखे स्ने ये सब ग्रंथन को मतो मन माने सो करे। गुरु साहब कहते हैं जे तू मुक्त होना परमेश्वर बिना किसी नाल प्यार ना कर परमेश्वर बिना किसी नू अपना ना मन ते जे तू नरकां वे जाना जन्म मरण लेना तो दुनिया नाल प्यार पा ले। ये सारिया वेदां ग्रंथां का सिद्धांत हैगा। देखो मदा अपने बसंत लता हुई है बसंत लता नू सुमंद खां पठान ने आख्या सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज शरीर छड गए साहबजादे शरीर छड गए सिख सारे आनंदपुर साहब खत्म हो गए पता नहीं किथे गए मैं हूं तेरे नाल निकाह करना है तू मेरे नाल शादी कर ले। ते बसंत लता ने कहा मेरे नाल माता साहबदेवां दा तो दसवें महाराज का वायदा हैगा उन्हें मैनू पुत्री आख्या सी उन्हें आख्या सी पुत्री इस लोक विच भी तेरी सहायता करेंगे परलोक विच भी मेरी सहायता करेंगे मैनू नेशा मेरी सहायता करूंगे
समुद्र का कहने लगे कितों तेरी सहायता गुरु गए, देख मेरे पर खंडा हैगा, हमें मैं तेरा सिर उतार देगा। किथे वो सहायता करने वाले तेरे हैगे, उन्हों का कोई नहीं पता किथे गया। सद उन्होंने पुकार उन्होंने, उस वेले बसंत लता ने हरनी मांगो, हाथी मांगो, सन्ने मांगो, ध्रुव मांगो, द्रौपदी मांगो, महाराज ने पुकारिया। ते महाराज तुसी आख्या सी तू साडी पुत्री है, इस लोक विच भी तेरे जाम होवांगे, पर लोक विच भी तेरे जाम होवांगे, हुण तुसी किथे चले गए, मेरी आगे आके सहायता करो। उस वेले बसंत लता ने वेख्या था गुरु साहब अपने घोड़े ते चढ़ के ते माता साहब देवा नाल अपने पंजा प्यारिया नाल साहब जादा नाल आ गए ते समुद्र खान गसी पै गई। उस वेले महाराज है कि उन्होंने सहायता करती पे बीबी दयाल कौर जलंधर के बीच में रहने वाली सी, ये अपने पिता नाथ जो सुरेश पिता दे पास श्री आनंदपुर साहब जंग के मौके दर्शन करने वास्ते जाती सी, रास्ते पठान बेईमान हो गया, उन्हें पिता का सिर कट दिता। उसने बहरा किया था कि तुसी फिक्र चिंता ना करो, मैं थोड़े ना धोखा नहीं करता, मैं थोड़ा जावन बनागा। जिस वेले पिता का बीबी दयाल कौर के पिता का सिर कट दिता तो उस वेले बीबी दयाल कौर ने वेख्या मेरे पिता ने मार दिया, जामन वेखे कदे किसे पासे वेखे, कदे किसे पासे वेखे, कदे किसे पासे वेखे। वो पठान कहंदे की वेखनी है, आखे जामन नू, जामन तेरा इत्थे किथे, ओह तां आनंदपुर साहब के विच 22 लख फौजां दे घेरे के विच मैं आया। वो कहंदी हाजरा हजूर है, उन्हां दा वेला पूरा जरूर आएंगे। वो कहंदे की जनानी ने गल्लां करने, हथ पर बन्नो ते खच्चर ते लदो, तुहानू भी ले जाओ, इन्हू भी ले जाओ। उस वेले की वेख्या बीबी दयाल कौर ने, महाराज आ गए, महाराज आ गया पंजा प्यारियां दे सर। उस वेले पठान नठे, महाराज ने उन्होंने पिछो नठ के उन्होंने सिर धरते वखरे किए, नाले तुसी सानू जामन बनाया भाई, नाले तुसी हुण बेईमानी कीती है, इहदे नाल धोखा कीता है, पंजे पठान मार दिते। फिर उस वेले जिहड़ा बीबी दयाल कौर दा पिता सा उहदे ते अपने महाराज ने कमंडल विच जल दा छिट्टा दिता, उह महाराज दा भजन करदा खलोता, कहिंदा पुत्री मैनू नींद वधी आ गई, ये सिर ए पठान किसने मारे है। बीबी दयाल को कहने लगी पिता जी ए पठान बेईमान हो गया से, ए सच्चे पिता ने आके मारे है गे, कोई फिक्र ना करना, देखो श्री आनंदपुर साहब पहुंच गए। इस करके जे कोई चाहता फिर मैं माया दी कैद चो निकल जावा, मैं जन्म मरण कट देवा, क्यों कल युग अखीर का युग है, सज द्वापर तेरे तभी चुके, कल युग अखीर का युग है, ये अखीर दी साडी जन्म है। जे असि ये अपने मन के विच ना सोच सोचांगे फिर असि 20 सालां 25 सालां फिर जम के परमेश्वर ना मिल जाएंगे, फिर नहीं मिलना, फिर बिल्कुल कोई परमेश्वर ना नहीं मिलेगा, फिर कोल कलयुग का समय आ जाएगा। जे 10वें महाराज ने कलयुग के लक्षण लिखे है, कोई संत महात्मा संसार के बीच में नहीं रहेगा, कोई राजा धर्मी नहीं रहेगा, अपने बगाने हो जाएंगे, गुरुद्वारे मंदिरों के बीच में सब नास्तिक लोग हो जाएंगे, सारे पाप विवाद फैल जाएंगे। उस वेले परमेश्वर के पास का कौन उपदेश करेगा, सानू कौन सानू संसार विचों कढ़ेगा। तो इस करके महाराज कहंदे ये जिहड़ा तेरा मौका हैगा, इहदे विच कबीर साहब का भी शब्द हैगा, गज नव गादा सी किस पुरियां एक तनाई, 60 सूत नव खंड 72 पट लोग गाई, गई बनामन माओ कर छोड़िए जायज लाओ, गजी न मिलिए तो न तुलिए पांचन सिर टाई, जे कर पांचन बेग न पावो जगर करे कराई, जे कर पांचन बेग न पावो जे कर हूं तू शताबी, बहुत शताबी इस मनुखा दे के विच उस परमात्मा नु ना पावेगा, जे कर पांचन बेग न पावो जगर करे कराई, फिर 84 लख जीना च नेला बन के सप ना लड़ूंगा, इला बन के मुर्गी ना लड़ूंगा, आपस विच एक दिन जंग करूंगे, जगर दिन की बैठ, ये दिन भी तेरी समाप्ति हो जानी है, कोई चीज संसार के बीच में सदा नहीं रहने वाली, एक परमेश्वर ही सदा रहने वाला हैगा। इस करके जिस वेले दिन की समाप्ति हो जाएगी तो अंतरजामी परमात्मा तेरे ते कोप करूगा, मैं कोप करूंगा, जो वायदा करके आया परमात्मा के नाल वो पूरा नहीं इसने किया हैगा, आवे परमात्मा कोप करेगा। उस वेले अंतरजामी परमात्मा कोप करेगा, ए वेला कटे आए, ए वेला कटे आई का मतलब की है, ए मनुखा दे फिर नहीं मिलेगा, आ जेरा हुण सानू मानस दे मिली है, गुरु नानक दे वर्गे पीर है, दरबार साहब वर्गी बाणी हैगी है, हरिमंदर साहब हैगी है,
संत महात्मा है ये ऐसी फिर दोबारा कहिए फिर सानू ऐसा चांस मिल जावे। फिर कबीर साहब कहते ये वेला कत है ये मनुखा दे दा ऐसा वेला फिर तुहानू नहीं मिलेगा ऐसा चंगा मौका नहीं मिलेगा एहो तेरी बढ़िया गोविंद मिलने की ये तो परमात्मा दे मिलने का मौका हैगा। इस करके कबीर साहब कहते शोध पसारी यहां रो बपरी कहो कबीर समझाई हे बुद्धि विचारी दुनिया के पसारे छड़ दे अंगता ममता छड़ दे इहां रो अपने परमेश्वर के बीच में रह ते अपना जन्म सफल कर ते संसार तवजल ते पार हो जा। इस करके परमात्मा की प्राप्ति का तरीका इको एक हैगा परमात्मा के नाल प्रेम करना। गुरु साहब ने फैसला कर दिता सच कहो सुन ले सवे जिन प्रेम तीर तिन ही प्रभ पायो गोविंद पाओ भगत भुखा। परमात्मा राजा नु भी नहीं मिलता गरीबा नु भी नहीं मिलता है वह तो प्रेम वेखदा शिवनाग राजे का प्रेम वेखिया भाई लालो का प्रेम वेखिया ते अपना बिदर दा ते बिदरानी दा प्रेम वेखिया ते दुर्योधन वर्गों के प्रेम नहीं वेखे। राजा प्रेम करे तो उदे वस हो जाता मोर तज दे कृष्ण पुआन रस हो गया। तो इस करके अंतरजामी परमात्मा का कोई चीज नहीं वेखदा वह तो प्रेम वेखदा सच कहो सुन ले सवे जिन प्रेम की उतनी प्रभ पायो गोविंद पाओ भगत भुखा। इस प्रकार से महाराज का उपदेश सुन के

परंतु उतना चिर ही सुखी वस सकेंगी जितना चिर जीव आत्मा तेरा साथी तेरे नाल है। जदों तेरा साथी जीव आत्मा उठ के चल पवेगा तदों ही काया तू मिट्टी विच रुल जावेंगी जो सह प्रमाण कर रहे हैं।

एक आया जितना चिर तेरा खसम जीव आत्मा तेरे घर विच वसदा है सारे लोकी तैनू जी जी आखदे हन सारे तेरा आदर सत्कार करदे हन पर सह फरमाउंदे हन हे काया हे जिंदे जदों तेरा निमाणा कंत जीव आत्मा उठ के तुर पवेगा तदों कोई भी तेरी बात नहीं पुछेगा जो साहेब अपनी बाणी द्वारा प्रमाण कर रहे हैं।

जितना चिर तू पेके घर विच पाप इस संसार विच जितना चिर तू पेके घर विच रह के उस खसम प्रभु दा सिमरन करेंगी तद ही सौरे घर विच परलोक विच जाके तू सुखी वसेंगी जो साहेब अपनी बाणी द्वारा प्रमाण कर रहे हैं।

पंचम पातशाह अपनी बाणी द्वारा फरमान कर रहे हैं। ओ मनुख भागा वाला है जिस ते मन विच तेरा प्यार जाग पिया, जिस ते मन विच तेरे दर्शना दी तांग पैदा हो गई, जेड़ा विराग विच तेरे दीदार करना चाहुंदा है, जिस ते मन विच विराग है उसनू ही प्रभु मिल पैंदा है। ओ प्रभु दे दीदार कर सकता है जिस दे मन विच विराग। रायपुर दे रहण वाले सोना अते मोहना जिन्हां नूं भगती दा रंग चढ़िया, दिन रात ठाकरां दी पूजा करदे हन, निता पर ठाकरां नूं इशनान करवा के धूप बत्ती करके कीर्तन विच जुड़ जांदे हन, मगन हो जांदे। एक दिन ठाकरां नूं इशनान कराउण वास्ते जल लिया रहे हन, तां रस्ते विच एक गुरु दा प्यारा गुरसिख जो जख्मी हालत विच पिया है ते मुखों उचार रहा है कि कोई एक घुट पानी दा पिला जा, तां इन्हां ने सुनिया अते रुक गए। तां फिर की आख्या, असी तां ए पानी ठाकरां दे इशनान वास्ते ले जा रहे हां, ए पानी जूठा हो जावेगा तां फिर तुर पए। फिर गुरसिख ने आवाज दिती, भाई एक घुट पानी दा पिला जाओ। फिर दोनों जने रुके, वापस मुड़े कि इस नूं घुट पानी दा पिला दीए। फिर आखदे हन कि जे इस नूं घुट पानी दा पिला दिता ए पानी जूठा हो जावेगा, इस जल दे नाल असी ठाकरां नूं इशनान कराउणा। फिर तुर पए ता गुरसिख ने आख्या, तुसी एक घुट पानी दा नहीं पिलाया, अच्छा जिस ठाकर वास्ते तुसी जल ले जा रहे हो ठाकर दर्शन नहीं देवेगा। आज गुरसिख दे मुंह चो ए आवाज निकली, ए आवाज सोना ते मोहना दे कन्ना विच पई, ता ए आवाज गूंज उठी, ठाकर दर्शन नहीं देवेगा। घर आए, ठाकुर नूं इशनान कराया, कीर्तन करन लगे, पर अज मन नहीं जुड़ रहा। कन्ना विच ओ आवाज आ रही है, ठाकुर दर्शन नहीं देवेगा। ता जिस वक्त मन ना जुड़िया, सोचिया कि उस गुरसिख नूं घुट पानी पिला आईए, हो सकदा साडा मन जुड़ जावे। ता उत्थे पहुंचे की टकिया, जो गुरसिख पानी मंग रहा सी अज शरीर छड़ गए, श्वास निकल गए हैं, मन बहुत उचाट होए कि असी इस नूं एक घुट पानी दा नहीं पिला सके, सचमुच एक बड़ा वड्डा पाप कर बैठे। ता पुछिया कि ए गुरसिख कौन है, पता लगा कि ए कलगीधर पातशाह दा अनन सिख है, प्यार वाला सिख है, जो संगत शहर कलगीधर पातशाह दे दर्शन करन जा रही सी, डाकुओं ने संगत ते हमला कर दिता, ता इस गुरसिख ने डाकुओं नाल मुकाबला कीता, ता डाकुओं ने इस नूं जख्मी कर दिता, जो कि पानी मंगदा मंगदा शरीर छड़ गए। ता इन्हां दोहां दे नेत्रां विचों अथरू वग तुरे कि असी इतने निभागे, इतने निकरमे कि असी इस नूं एक घुट पानी दा भी नहीं पिला सके। अज मन विराग विच आ गए, मन भर गए कि किसे तरीके सहिब कलगीधर पातशाह दे दीदार करिए ते अपनी भुल बख्शाई। तां अज दोनों दे मन भर गए, दर्शना दी तांग पैदा हो गई, उस सज्जन नूं लभण तुर पे हन। सुन यार हमारे सज्जन, एक करो बेनंती यार।

सतगुरु रायपुर विच आए चरण पाए बेंत संगतां ने दर्शन कीते बख्शां हासिल कीतियां तां इन्हां दोनां नूं पता लगा सोना ते मोहना कि साहिब कलगीधर पातशाह इत्थे आए हन चरण पाए हन क्यों ना असीं वी चल के दीदार करिए। मन विच उबाल उठिया दोनों पचे के चल के साहिबां दे दीदार करिए। पर जिस वक्त साहिबां दे दीदार करन आए पर साहिब अगे नहीं हन दर्शन नहीं होए ता फिर कन्ना विच ओ आवाज पई कि ठाकुर दर्शन नहीं देवेगा। ता जिस वक्त साहिब वापस जान लगे ता ए दोनों जने अद्धा कु मील अगे जाके खिलो गए कि एथों दी साहिब लंघणगे ता असी दर्शन कर लवांगे। पर संगत ता उस रस्ते तो लंघी पर सतगुरां ने अपना घोड़ा मोड़ लिया खेतों दे रस्ते दी लंघ गए ता फिर कन्ना विच ए आवाज गूंजी ठाकुर दर्शन नहीं देवेगा। ता हुण इन्हां दे मन विच ए निश्चा हो गया कि सचमुच सतगुर दर्शन नहीं देने ता दर्शना दी होर लालसा वधी मन विराग विच आ गया ता अरदास कीती पातशाह एक घड़ी भी तेरे तो बगैर नहीं रह सकदे कृपा करो एक घड़ी भी तेरे तो बगैर नहीं रह सकदे एक पल जुगां दे समान बीत रहा है जो सहबी अपनी बाणी द्वारा प्रमाण कर

अज मन विराग विच है। दोनों जने आनंदपुर साहब तुर पे कि पहला साहबां दे दर ते चल के सेवा करिए, फिर साहबां दे दीदार करा। जितना चिर सेवा नहीं करांगे उतना चिर साहबां दे दीदार नहीं हो सकते। ता दोनों जने साहबां दे बाग विच आए ता केसरा सिंह माली नूं बेनती कीती कि कृपा करो सानू ए सेवा दा मौका दे। केसरा सिंह ने गरीब जान के निमाणे जान के छोटे माली दे तौर ते रख लिया। दिन रात बूटियां दी सेवा करन लगे, श्रद्धा ते भावना नाल सेवा कर रहे हन। एक दिन सहकलवी तरपाशा बाग विच आए ता एक फुल्लां दी क्यारी दे कोल खलोते बड़े खुश होए, बड़े प्रसन्न होए ते माली केसरा सिंह नूं शाबाश दित्ती। आखिया, तेरी सेवा ते असी बहुत प्रसन्न, तू बहुत सेवा करदा। ता केसरा सिंह ने बेनती कीती, पाछा ए सेवा मेरी नहीं, ए सेवा छोटे माली दी है जो बहुत गरीब हन, आप दे चरणां नाल प्यार करदे हन, पर बड़ी श्रद्धा ते भावना नाल सेवा करदे हन, ए सेवा उन्हां दी। ता साहबा ने एकदम अखां बंद कर लईआं ते मुख विचों साहबां दे ए आवाज निकली कि ठाकर दर्शन नहीं देवेगा। ए आके साहब वापस चले गए ता केसरा सिंह ने सोना ते मोहना नूं दसिया कि साहबां ने ए वचन कीते हन कि ठाकर दर्शन नहीं देवेगा। ता दोनां दे नेत्रां विच जल वह तुरे। सावण भादो दी झड़ी लग गई ते आख्या, पातशाह सानू दीदार नहीं होणगे, अज मन वैराग विच आ। अच्छा पातशाह, आप दी रजा है जे दर्शन नहीं ता सेवा ही सही, आप दे दर ते सेवा करके दिन गुजार लवांगे। इन्हां दा नैन कटोरे भर गए, नैन तरसन लग गए, जो सहबी अपनी बाणी द्वारा फरमान कर रहे हैं।

हलत मन सुगावे। ठंडा तत्ता कोयला काला करके हथ जलावे। जू चक चूंदर सप दी अन्ना कोड़ी कर दिखलावे। जान रसौली देह विच वटी पीड़ रखी शर्मावे। वंश कपूत कुलछना छड़ियां बने न विच समावे।

जैसे घाव घायल कै जतन कै निको हो, पीर मिट जाए लेक मिटत न पेखी है। जैसे घाव घायल कै जतन कै निको हो, पीर मिट जाए लेक मिटत न पेखी है। जैसे फाटो अंबर सियाए पुन ओडियत, नांगो तो न होए तो ठेगरी परेखी। जैसे फूटो बासन सवार देत है ठठेरो, गिरत न पानी पै गठीलो पेख पेखी है। तैसे गुरशरण विमुख

वंशघात अपराध करारे, मद पी जुए खेल दे जोहन पर नारे, मोहन पराए लक्ष्मी ठग चोर चगारे, विश्वास ध्रोई आकृत घन पापी हत्यारे, लख करोड़ी जोड़ियन

सिर छार उड़ावे। तुम्हें अमृत सिंजिए कुड़त न जावे, सिमल रुख सरेविए फल हाथ न आवे। निंदक नाम भी होने सत्संग न पावे, मूर्ख सच न जाननी।

कर दे परवासा थल विच तपन पठिया क्यों लहे प्यासा सोने राज कमाई है कर भोग बिलासा

खूनखार शराबी हाथियों नाल लड़न दी समर्था रखन लगे। ये शक्ति सारी खंडे बाटे दे अमृत दी, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह

तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। इसका मतलब कि अकाल पुरख वल्लों

गिद्दड़ों से मैं शेर मरवाऊं, सवा लाख से एक लड़ाऊं, होया भी ऐसा। लखां लखां फौजां नाल

जे कोई मुसलमान नहीं बनदा उसनू मौत दे घाट उतार दी। ए दुखी होए सहायता लैण वास्ते आए, बेनती करन आए ने कि साडी रख्या करो,

इधर माता तृप्ता जी अपने सपुत्र धन गुरु नानक साहब की याद विच मंजे ते लंबे पए। एक पासे मेहता कालू जी भरा पए देखते और एक पासे भाई अजय राम जी और एक पासे रायपुर की तलवंडी का राजा राय बुलार और प्यारे उड़ीकते पए ने कि इस वरी जरूर गुरु नानक साहब की वरे गंढ गुरु नानक साहब की हजूरी विच मनावांगे। सूरज डुबण वाला हो गया है। मेहता कालू जी दरवाजे वाल निगाह टिका के बैठे हैं और बेबे नानकी जी छत ते खड़े होके राह पै थकदे ने। अचानक मेहता कालू जी खुशी नाल झूम उठे और आवाज मारदे ने, तृप्ता आओ देख मेरा नानक आ गया है। कहंदिया होया बुढ़ा बाबा कालू उठ के खड़े होए और सचमुच सामने धन गुरु नानक साहब नाल सेवक मरदाना वेड़े विच दाखल होए और आंदिया धन गुरु नानक साहब ने इस सद लाई, सत करतार, इस सत करतार अंदर जिवें लह गया दिल की गहराई विच। मेहता कालू जी खुशी नाल झूमदे होए अगे वधे। धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे कोल आए, गुरु होण दा मन विच गुमान ने अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकिया। जिस गुरु नानक नूं दुनिया नमस्कारां करदी है ओ धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकदे ने ते पिता ने बाहां तों फड़ के अपने सपुत्र गुरु नानक साहब नूं गल दे नाल लाए, कंड ते हाथ फेरे है, अथरू नहीं रुकदे ते कहंदे ने बेटा अज मन नूं ठंड पै गई, बड़ा समा हो गया तैनू उड़ीकदे आ, तैनू बड़ा मैं झिड़किया, तैनू मैं एक बारी चपेड़ा भी मारी है, पर बेटा बाद विच जाने है कि तू की है। अचानक ख्याल आया, कहन लगे जा बेटा पहला अपनी मां नूं मिल। धन गुरु नानक साहब माता तृप्ता जी दे कोल आए, मंजी ते कोल बैठे ते की देख।

जद इतने बचन कहे भैन जी ऐ बेबे नानकी तुसी वड़े हो तुसी मेरे पैरा ते मत्था टेको ते नहीं हो सकता साथ संगत एक एक लफज विचों साडे जीवन वास्ते सिख्या है ते वखरी गल है इना गल्ला नू कोई मन्ने पावे ना मन्ने पर सुख ता मनन विच ही है हुण तां गुरु नानक साहब ने भाई मरदाने नू किया मरदाने हां हुण तुसी जाके भाई अजय राम जी नू लेके आओ शहर वासियां नू पता लग गया से दीपमाला उस वेले शुरू हो गई कि धन गुरु नानक साहब का अज जन्मदिन मनाने का सुभाग प्राप्त हो रहा है और कुछ देर बाद धन गुरु नानक साहब आप उठे ता पिता मेहता कालू जी पुछदे ने बेटा किथे चले साहब जी कहन लगे मरदाना भाई अजय राम नू वैराग विच उठा नहीं सके धन गुरु नानक साहब आप उस जगह पहुंचे जिथे भाई अजय राम जी वैराग विच बैठे शब्द गा रहे सन अगे भाई मरदाना कोल बैठे शब्द पढ़ रहे और वार वार कह रहे सन जय राम जी उठो धन गुरु नानक साहब आ गए ने पर भाई अजय राम जी वैराग विचों उठ ना सके क्योंकि ए प्यार भागा नाल मिलता है और इस प्यार नूं ओही जानता है जिसने ये प्यार किया। भगत कबीर जी कहंदे ने सो कत जाने पीर पर आई जां के अंतर दर्द ना पाई। भगत रविदास और भगत कबीर साहब दोनों दे शब्द पढ़िए एको ही गल नजर आती। भगत रविदास ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਤੜਪ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਗੀ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਣੇ ਵੀਰ ਰਾਮ ਭਗਤ ਅਣਿਆਲੇ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੀਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣੇ।

جو ہماری بن ہوتی میرے سدگڑا ثابت تم ہر جانو آپے ثابت تم ہر

अपने दास को अपने दास को प्यासा

हे निरंकार, हे वाहिगुरु, हे अकाल पुरख, तू सारियां ते मेर कर, सारी सृष्टि ते मेर कर। तू मालक है, तू प्रतिपालक है, तू राखा है सबे जी समा, तू सारियां ते मेर कर। जो ईरखा, द्वेष, वैर, विरोध जो मन च अग लगी हुई है दूर कर, सारे अनु समत बख्श। जगत सड़ रहे है, अगा लगिया हुई ने, तू कृपा कर, तू मालक है सारिया ते कृपा कर। जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार, जित दुआरे उभरे जिते लेहो ओबा, तू सारिया ते मेर कर। सारे तेरे ने, तू सारिया की कृपा कर। ये अरदास है कि अन्न पानी मुच उपाए, ये पदार्थ सारिया नू दे, सारिया की कृपा कर। दुख दलिद्र भन दर सारिया का दुख दूर कर, दलिद्र ये सब दूर कर। तू सारिया ते मेहर कर, मेहर कर।

जे अनेक सुख रस भोगन पूरे ग्रह सोहन चंदन सुगंध ग्रह सोहन चंदन सुगंध